0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
6: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
5: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
7: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
8: Create terror.
5: देखो दस्तार तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: सत श्री अकाल जी मैं तुहाडा अपना रविंदर गरेवाल तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: White Hill Studios पेश करते हैं period action thriller दस्तार.
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी.
2: Starring Tarsem Jassad, Geet Goraya, ते Yograj Singh.
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create terror.
2: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू.
6: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो.
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार.
6: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच.
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे.
7: आहो जी आहो.
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच.

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों वी वध दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: सतिकाल, मैं हूं दिनी शेर गिल, ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: अल्फा
3: सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
3: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
3: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा
3: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
5: जैस्मीन
6: बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू नेड़े सिनेमा घरां च। व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
7: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
6: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
8: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
9: क्रिएट टेरर।
6: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू।
10: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
11: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
10: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
11: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: अल्फा
4: सबसे दमदार और रोमांच कहानी,
3: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है,
4: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
4: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
3: इंडिया अल्फा से डरेगा।
6: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
7: वैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो, देख रो इन एन एज सरपंच।
8: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
7: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च। व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
7: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
9: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
7: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
1: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
10: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
10: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM 24/7 ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਿਡਨੀ ਕਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ।
3: सबसे दमदार और रोमांच कहानी
4: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
3: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
4: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
3: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
5: शुरू करो अग्नि परीक्षा
3: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
6: वेट कर रहा है तुम्हारा।
7: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
8: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
7: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
8: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
7: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
8: आहो जी आहो,
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
10: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
11: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
10: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
12: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
13: क्रिएट

0: यो हाँ जी 1674
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Haji 16748.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: हावे सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हां जी हां जी।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
4: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
3: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
5: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
6: Create terror.
3: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नेड़े सिनेमा घरां च।
2: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
4: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
5: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
6: क्रिएट टेरर।
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
7: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
9: अल्फा सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
10: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
9: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
10: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
9: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
11: शुरू करो अग्नि परीक्षा
9: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा।
12: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
13: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
14: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
13: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
14: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
13: यानी हुन 22-कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
14: आहो जी आहो।
13: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
15: रेडियो हां जी 1674।
16: हाय दिस सलमान खान एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो हां जी। हाय दिस सलमान खान एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो हां जी।

रेडियो हांजी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। अज 13 जुलाई 2026 सोमवार दा दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जान दियां खबरां लैके आए। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करदे आं ते फिर भारत ते आस्ट्रेलिया दियां वी अपडेट्स तुहाडे नाल करांगे सांझियां प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच कौमांतरी खबरां दे नाल सांझ।

0: मैं रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।
2: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर।
3: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
4: हाँ जी हाँ।

0: सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
2: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
1: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
3: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
2: Create terror.
1: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च सतारां जुलाई नूं।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों वी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: अल्फा
6: सबसे दमदार और रोमांच कहानी।
2: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
6: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
2: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
6: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा
6: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
8: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।
9: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
10: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
9: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
10: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
9: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
10: आहो जी आहो।
9: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
1: भैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो सरपंच।
11: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसे राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
1: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाज सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नूं तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

0: तड़ कोई हल नहीं मैंने पता नहीं इतना लगता कि मम्मी मम्मी दे ना अल्फाज अपने तरफों बोली जाती मम्मी ने स्क्रिप्ट बना के तो नहीं दी आई आई बोल लो
1: नहीं
0: सबका बदला लेगा तेरा फैजल
1: नोट रख रहे होंगे जो भी मम्मा ते डैडा कर दे
2: नोट्स बना दिया सारा कुछ
0: डॉट पॉइंट
2: चल हार गए अपन
1: कल
2: जेंडर
0: चेंज हो गया नहीं तो असीं पढ़ लेना
2: सीगा हां तो जेंडर तेज थैंक यू
0: थैंक यू हैव अ नाइस डे
2: सत श्री अकाल तुहाडा दिन वधिया वधिया रहे भाई सारयां दा स्कूल दे विच खूब एंजॉय करो तुसीं मन ला के पढ़ाईयां करो ते चढ़दी कला च रहो इस तरह हसते खेडते रहो ते हाँ जी सुखन तुम हूँ कर सकते हो तो बिजी सी लाइन अमनदीप ढिलों जी गुड मॉर्निंग भेजते हैं तो राकेश कुमार जी सत श्रीकाल भेजते हैं सरबत दे पले की अरदास करते हैं कहते हैं कि सब खुश रहन तंदुरुस्त रहन चढ़दी कला की अरदास करते हैं मुहब्बतों का हर पासे वास हो मनोकामनावान सब दियाँ पूरिया होन परत तो करते हैं मैसेज सतीश जी कहते हैं कि वो वेरी नाइस आर जे सो ये हरगुन नूं एप्रीशिएट आई थिंक कीता इन्हां ने ते हरमन सिंह जी कहिंदे ने कि सत श्रीकाल वाहिगुरु सारे चढ़दी कला दे विच रखे ते तंदुरुस्ती बख्शे गुरजीत कौर जी सत श्रीकाल धन्नवाद तुहाडा जसप्रीत जी धन्नवाद करन जी बहुत बहुत मेहरबानी सुखदीप सिंह घुम्मण जी कहिंदे कि बहुत ही वधिया कहानी सी वाहिगुरु सारे चढ़दी कला बख्शन ते लव जो धुना जी लुर मोगे वाले सरबत भले की अरदास करते ने बहुत बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी ते जसवाल साहब कहिंदे कि संजय कपूर की मूवी सी आती नहीं वाला कटरीना कैफ नहीं आउंदी अच्छा है
0: ओके कटरीना कैफ तो उस जमाने च नहीं सी ए वाले गाने दे विच
2: अच्छा ये की कह रहे फिर एक मिनट फिर पढ़ लेने संजय कपूर की कहिंदे मूवी सी आती नहीं वाला कटरीना ही गया ना कटरीना कैफ नहीं कहिंदे आउंदी मन साहब कहते वाहगुरु के अगे अरदास करते हैं सब चढ़ती कला के रहन शुकराना गुड मॉर्निंग भेजते हैं सारे परिवार के लिए समाइल के नाल बलजीत जी धन्यवाद अमृत जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर जी धन्यवाद गुरवीन परिवार वालों भी सत श्रीकाल आए जी ढिलों परिवार के वालों भी सत श्रीकाल आ गई बैरिक के पानिया तो करमजीत कौर भुलर जी सत श्रीकाल भेजते हैं करम जी कहते हैं कि सत श्रीकाल फ्राइडे डिनर वाज वाइट चने अनियन ककुंबर टमाटो सलाद ते होम मेड हुमस सॉस विद नाचो भाजी
0: चिप्स ता ना
2: हां नाचो चिप्स थैंक यू जी बहुत मेहरबानी स्वादी स्वादी मैसेज भेजने लई ते लास्ट होणगे जी साडे नाल सुखन के साहिबा डडवाल साहब सत श्री अकाल जी
0: सत श्री अकाल की हाल चाल है ठीक हो
2: जा रहे वज नहीं
1: छुट्टी
2: आज छुट्टी आ यार रजाई नु भी छुट्टी दो हैं
1: मैं बेबिक स्कूल जा रहा था बाचो नेक्स्ट ईयर
0: अच्छा डायरेक्ट स्कूल जा रहा
2: है आ भी गुड है ना नाइस या तुम हस दे पीड़ नहीं हुई हई भी नहीं हुई है
0: पहला बच्चा है जेड़ा डिग के हसदा
2: वीरा चल गया स्कूल फिर कले दी सरदारी फिर है तो छड़न गए ही के करे रहे ही अच्छा करे ही वाह अच्छा छड़न गए ही ओके अच्छा कार च तुम तो टाइम नाल ही उठ पेंदे हो फिर
1: नहीं मैं आज मैं कल मैं कभी कभी मैं बैंक से गया ही मैं उठे जा रहा ही
2: वाह बढ़िया जिम्मेवारियां हैं ਤੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੁੰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?
1: ਨਹੀਂ
2: ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਚਲਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
0: ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਧੋਣੀ?
2: ਬਹਿ ਕੇ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਓਕੇ, ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਫਿਰ?
1: ਗਾਣਾ
2: ਕਿਹੜਾ?
1: ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ
2: ਸੁਣਾਓ।
0: ਹਾਂਜੀ,
1: ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਲਾਰਮ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਉੱਠ ਆਈ ਪੈਰ ਦੇਰ
2: ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਚੱਲ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਉੱਠ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਵੀਰ ਨੂੰ,
0: ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸੀ
0: ਜਸਕੀਰਤ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪੂਰੇ।
2: ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ।
0: ਜਸਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਨਾ ਕਿਹਾ 95 ਚ।
2: ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਬਾਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਰਗੁਣ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਗਈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਭੀ ਅਭੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਸੇ 1500 ਰੁਪਏ ਜਮੇ ਹੋਣੇ ਕਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਉਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਥਾ। ਫਿਰ ਯੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ, ਕਹੀਂ ਯੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾ, ਸੁਣੋ ਯੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਹਾਂ ਸੇ ਜਮਾ ਹੋਏ, ਮੁਝੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਯੇ ਤੁਹਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਸ ਕੀ ਘਰ ਕੇ ਕਾਮ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਪਤੀ, ਸਿਰਫ 1500 ਤੋ ਕਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋ ਤੋ ਤੁਮ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇਤੀ ਹੋ। ਪਤਨੀ, ਕਾਮ ਵਾਲੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਵਾਲੀ ਕੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ, ਕੇਵਲ ਪਗਾਰ ਦੇਤੀ ਹੂੰ, ਸਮਝੇ, ਤੁਹਾਰਾ ਦੋ ਟਾਈਮ ਕਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਾ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੱਸੀ ਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ, 1674 AM।

रेडियो हांजी 1674 एएम दे उत्ते तुहाडा सारेयां दा स्वागत जी। अज 13 जुलाई 2026 सोमवार दा दिन भारत आस्ट्रेलिया दुनिया जान दीआं खबरां लैके आए। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करदे आं ते फिर भारत ते आस्ट्रेलिया दीआं वी अपडेट्स तुहाडे नाल करांगे सांझियां प्रोग्राम न्यूज़ रूम दे विच कौमांतरी खबरां दे नाल सांझ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: अल्फा
1: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी।
0: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
1: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
0: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
1: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
1: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
3: वो वेट कर रहा है तुम्हारा।

0: करो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
4: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
3: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
5: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
6: क्रिएट टेरर।
3: ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ।

0: और क्यों एक मूड ते आके मैनूं लगदा है कि तेरी होंद नूं बयानण लई जिवें हमेशा ही कोई कसर बाकी रह जांदी है। मैं तैनूं दुनिया दे नज़ारियां नाल मेल मेल के वेखण दी गलती कर बैठा, पर तू तां अपने आप विच मौलिक अलहदा ते कुदरत दी शाना दी सिरजना है।
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 16748.

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: सबसे दमदार और रोमांचक कहानी
1: अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है।
0: शानदार एक्शन एंटरटेनर 3 जुलाई को।
1: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
0: आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर।
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा
0: 3 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अल्फा
1: इंडिया अल्फा से डरेगा।
3: वो वेट कर रहे तुम्हारे।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: Now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 16748.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: बात करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: सतकाल मेहर जी शेरगिल से सुन रहे हैं और रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

स्वागत है तुहाडा अज दी कहानी अज दे विचार दे विच। अज दी कहानी या विचार दे विच गल करते हैं उन्हां शुकरानियां दी जिहड़ा असीं कदी कीता ही नहीं या करना भुलदे जाने। 6 महीने पहलां दी गल है, गुरद्वारा साहब दी। हफ्ते दे विच मेरा 2 वारी जाना हो ही जाता। इसे वक्फे दौरान दोपहर दे समय सेवा करदा इक वीर मिलिया। वह पहलों वीर दुपहरे नहीं सी दिखता हुंदा, उन्हें हुणे जिद्दां दुपहरे दुपहरे आना शुरू किया सी, रोज आउंदा। एक दिन इदां ही मेल होए, थोड़ियां गल्लां बातां होईयां। मैनूं उन्हें बड़े चाह नाल दस्सिया, कहिंदा वीरे मैं हुणे हुणे गुरुद्वारे आना शुरू किया। बई हरियाणे वल दा सीगा, पंजाबी दे नाल नाल थोड़ा गल्लां दे विच हरियाणवी जिहा टच। जदों रोज मिलना तो बंदा 2-4 गल्लां खोल के करदा ही है, क्योंकि जिद्दण पहले दिन गल हुई तो बई दी ये गल सी कि मैं नवा नवा आना शुरू किया, जिदा कोई चा ना दसदा, वह जिदा खड़ गई मेरे दिमाग च। फिर एक दिन आप कठियां लंगर छकते सी, तो मैं उन्होंने पूछ ही लिया, बई भी तू कहिंदा सी भी नवा नवा आना शुरू किया, इहदा की मतलब होया? कहिंदा तुसीं सुन के हैरान होवोंगे, मैं कदी गुरुद्वारा साहब ही नहीं गया सी अज तो पहला। कहिंदा मैं हरियाणे च रहिना, उत्थे वड्डा होया, हुण इत्थे आ गया, इत्थे रहिंदे नूं 6 साल हो गए, ते एक पंजाबी वीर नाल काम करदा मैं। वीर भी कहिंदा काफ़ी वधिया, बड़ा मददगार आ, पर कहिंदा पिछे जे मेरे वीजे दा एक चक्कर पै गया। हरेक वड्डे वकील नाल गल कीती, ते अखीर नूं समझ इहो ही पई कि हुण जो भी है किस्मत हाथी है, 50% चांसिस ने वीज़ा आ जाण, 50% आ के जो हुण तक कीता उहदी सारी मेहनत खराब है, ते PR ना वी आवे। कहिंदा इह सुण के मैनूं बड़ा धक्का लगा कि सारी मेहनत दा कोई मुल ही नहीं पैणा। पर कहिंदा जिहड़े वीर नाल मैं काम करदा ना, उहने हमेशा रोज़ ही हरेक चीज़ दा शुक्र ही करदे रहना, ते उहने मैनूं वी इहो सलाह दित्ती, चल कोई ना झुरिया ना कर, अज मेरे नाल गुरद्वारा साहब चल, जो हैगा उन्हां चीज़ां दा शुक्र करके आने। मैं भी हैरान सा कि जिहड़ा ऑलरेडी इन्ना झुरिया पिया उहनूं कोई कहे आ जा शुक्र करके आने, वह तो अरदास चाहुंदा होगा। पर वह कहिंदा उदण मैं गुरद्वारा साहब आया तो बई दे कहण ते पहली वारी शुक्र ही कीता भी धन्नवाद जो कुछ भी है, जो कुछ भी बख्शिया। तो कहिंदा बैठिया यह एहसास होया कि मेरे तो वध इत्थे अमीर कोई जापदा ही नहीं, मेरे तो वध शायद ही किसी कोल स्किल होवे जो परमात्मा ने बख्शिया, तो मैं इन्ने पिछले सालां च सिखिया। कहिंदा बस उदन दा दिन सी, तो उत्तों अगले 2 महीने मैं रोज़ आना, तो सिर्फ शुक्र करना, सिर्फ शुक्र। पर परमात्मा जानी जाण, उन्हूं पता कि शुक्र दे बदले भी इनू की देना, इनू किस चीज़ नाल नवाजना। तो उही होया जो होना सी, अर्जी बिना लाए मंजूर हो गई मुंडे की। तो कहिंदा उदण दे दिन तो लैके हुण 6 महीने हो गए ने, 2 महीने PR आई सी, तो हुण 4th महीना होर है, मैं हाले भी जदों वेला होना इत्थे आ जाना, सेवा करदा, शुक्र करदा, बड़ा मज़ा आउंदा। तो कई बार आप सिर्फ यो सोच लें भी इन्ने साल हो गए जाते, इन्ने साल हो गए मत्था टेकते, मेरी गल नहीं बनती, मेरी सुनी क्यों नहीं जाती। पर परमात्मा ने कोई डायरी लाई नहीं जिदे अटेंडेंस नोट करता हो, सिर्फ तो सिर्फ जड़ा दिलों सच्ची नीत नाल पहुँच करता ना, वो सुनी जाती है। कई बार किसी की पहले दिन ही अर्जी मंजूर हो जाती, कई बारी साल भी लग जाते।
साल लग जांदे अपनी नीत नूं ही सोचिया करदिआं, साल लग जांदे ने अपने आप नूं ही उस रम च ढालण नूं भी जो कीता बड़ा सोहणा, जे मैं मन लां भाणा ते होर राह बड़े खुल जाने ने, जे मैं करदा शुकर भी शुकर आ जो भी है ते होर राह बड़े खुल जाने ने। पर असी डरते हैं कि नहीं, ये मेरा प्लैन सी, इहदे लई मैं पैसे खर्चे सी, इहदे लई मैं समां दित्ता सी, ये राह इधर नूं ही जाना चाहिए। पर बड़ी घट वार बस ध्यान धर के कह दें कि परमात्मा जिहड़ा राह तू पाएगा उत्थे भी तुरंगे, चा चा नाल तुरंगे, भजदे भजदे तुरंगे। शुक्र आ तू नवा राह ते पाया, शुक्र आ जे तू एक राह बंद किया कोई डंडी तो छड़ी होगी। पर असी शुक्र भी नहीं करते, वड्डी गड्डी दा वड्डे घर दा ते करा दिने, कर भी दें, पर छोटिया छोटिया चीज़ों का, जिवें साढ़े बजुर्ग हरेक साह नाल वाहेगुरु, हरेक सिख दे नाल भी वाहेगुरु, जां राम जां अल्लाह जिन्हों भी तुसी ध्याउंदे हो, पर शुक्र जरूर करते सन, हर एक समय करते सन। आओ जदों भी समा मिले, जदों भी ध्यान धरिए, शुक्र जरूर करिए। जरूरी नहीं उहदे लई कोई वड्डा प्लाट वड्डी गड्डी वड्डा घर चाहीदा, उहदे लई जो हैगा उह भी हाले कईआं कोल नहीं आ, उहनां दा सुपना जो तुसी अपने कोल लई बैठे हो। शुक्र करो कि तुसी किन्नियां दे सुपने जी रहे हो जो हाले कईआं दे सुपने ही ने। शुक्र करते रहिए। धन्यवाद। ए सी अज दी कहानी।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हां जी 1674 है।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी रेडियो

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

ग्रोवर्स, वीड ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Namaskar and welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Last episode में हम लोग बात कर रहे थे कि पैसे का महत्व क्या है और चीजों का महत्व क्या है. For example, कार का या खिलौने का या बचपन में जो मैंने बात की थी पतंग का, कि हम पैसा कमाते कमाते खुशी ढूंढते ढूंढते वो चीज भूल जाते हैं जिससे पैसा नहीं खरीद सकता.
1: क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो खुशी के लिए हैं, तो देन इट वाज एक्चुअली कि खुशी पैसों से खरीदी जा रही थी.
0: और नहीं खरीदे और पैसा ना हो
1: तो वी थॉट विल नॉट बी हैप्पी ना.
0: तो बात
1: सही है ना. इवन व्हेन वी से कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बट इफ आई से पैसों से एक दो तीन चार चीजें खरीदी जा सकती हैं और जब ये चार चीजें आएंगी तो मैं खुश होंगी, सो इट इफेक्टिवली केम टू आई वाज बाइंग हैप्पीनेस.
0: दैट्स अ नाइस वर्ड.
1: इट इज इफेक्टिवली कमिंग टू दैट
0: लाइन, बाइंग हैप्पीनेस.
1: आई एम बाइंग हैप्पीनेस एंड व्हिच मेंट कि जब तक ये चीजें मेरे पास नहीं आएंगी आई एम नॉट हैप्पी. क्यों नहीं आ रही? मेरे पास पैसा नहीं है. तो पैसे कमाओ, चीज खरीदो, बी हैप्पी.
0: और जब तक ये सब नहीं मिलेगा आई एम बाइंग अनहैप्पीनेस.
1: वेरी गुड. सो माय डिपेंडेंसी चीजों के ऊपर एंड फिर इक्वेशन. सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वेशन ऑफ लाइफ हैज टू बी सेट राइट. अगर बेसिक इक्वेशन राइट नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जीवन की यात्रा बीत जाए और फर्स्ट इक्वेशन राइट नहीं थी. क्योंकि जैसे आपने लास्ट टाइम शेयर किया, ये तो बचपन से सिखाया गया था. एक वीडियो गेम पेरेंट घर लेके आएगा, बी हैप्पी, नाउ यू आर हैप्पी ना, नाउ यू गॉट दिस, नाउ यू.
0: बाद में बोलते भी हैं इतना कुछ सब कुछ लेके आया, अभी भी दुखी है, अभी भी रो रहा है, और क्या क्या लाऊं. दूसरे बच्चों को देखो, कुछ नहीं मिलता है, उनके माँ बाप ये सब नहीं करते, मैं कितने महंगे महंगे खिलौने लाता हूँ, फिर भी रोता है.
1: एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन कब बनी? राइट फ्रॉम दैट एज. यहाँ तक कि कहीं लेकर गए, घूमने के लिए भी लेकर गए, हॉलीडे पर भी लेकर गए. सो इट वॉज डीप इनग्रेन्ड, वी आर गोइंग देयर so that we will be happy.
0: Sister, मेरी बेटी को एक छोटा सा बच्चा हुआ, वो रो रहा था, तो मैंने उसके पास खिलौना ऐसे टी टी टी किया तो वो उसका ध्यान उधर गया और वो रोना बंद कर दिया.
1: ठीक है.
0: अब मैं ये 2 रुपए का करता या 200 रुपए का करता, उसको एक्चुअली हुआ डिस्ट्रैक्शन और वो हुआ चंद सेकेंड्स के लिए. फिर वो जब उसकी आवाज से बोर हुआ फिर रोने लग गया.
1: दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन. आज हम खुशी के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस में भी लेकर जाते हैं. टीवी देखना, मूवी देखना, शॉपिंग जाना, हॉलिडे के लिए जाना. माय होल लाइफ इट्स सो स्ट्रेस, सो मच वर्क, आई एम सो अनहैप्पी, सो मच टेंशन, लेट मी गो फॉर अ हॉलिडे.
0: और जिस तरह ये डिस्ट्रैक्शन से बोर होकर वापस रोने लगा, वैसे फिर आपकी बात आ गई.
1: तो हमने क्या किया इन चीजों में भी? आप देखो, शाम को घर आकर अगर मुझे रिलैक्स करना है, लेट मी रिलैक्स, तो वेयर इज माई पोजिशन टू रिलैक्स?
0: टीवी,
1: इन फ्रंट ऑफ द टीवी. नाउ देन वी सेड दिस गिव्स मी हैप्पीनेस. दिस वॉज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस. जैसे आपने कहा, वो थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड को मेरी परेशानियों से डिस्ट्रैक्ट करता, क्योंकि उसके अंदर वो पावर थी कि मेरे माइंड को कंप्लीटली इंगेज कर लेता. तो मन जो सोच रहा था प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ऑफ द डे, किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, ये सब मन पर चल रहा था. जब ये माइंड पर ये थॉट्स चल रही थी, आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग दोज थॉट्स. केम होम इन द इवनिंग, सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी. अच्छा, टीवी डिस्ट्रैक्शन फिर भी ठीक है. स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें क्या आई? मूड ठीक नहीं है ना आज, टेंशन है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है ना, इस टाइम पे मैं एक सिगरेट ले लूँ ना, मेरा गुस्सा चला जाएगा.
0: एक सिगरेट ले लूँ, एक पिक्चर देखने चले जाता हूँ, पिक्चर देखने के बाद बार में चले जाता हूँ, बार के बाद डांस में चले जाता हूँ, सुबह 3 बजे घर आके फिर
1: और कुछ नहीं तो एक हॉलिडे पे चला जाता हूँ. ऑलवेज ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी. डिस्ट्रैक्शन, जितनी देर हम वो करेंगे हमारा मन हमारी प्रॉब्लम से हट जाएगा,
0: बट
1: खुशी नहीं आई है, वो वाली सोच बंद हो चुकी है थोड़ी देर के लिए. What is alcohol doing to me? What is a cigarette doing to me?
0: थोड़ी देर के लिए मन को
1: thought stops, it becomes numb. My conscious layer of thinking has become numb with the substance. या शॉपिंग. आज बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग एक डी स्ट्रेसर है. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, लेट मी गो फॉर शॉपिंग. क्या करेगा शॉपिंग? शॉपिंग कुछ देर के लिए वो सारी जो सोच चल रही थी
0: ध्यान दूसरी तरफ लगा देगा,
1: डिस्ट्रैक्शन.
0: लेकिन छोटे बच्चे पे फिर हम चलते वापस, हमको बाद में पता चला है वो कुछ वो हिलाया, मैंने गिटार बजाया, मैंने चिल्ला के म्यूजिक लगाई, लेकिन उसको समझ में नहीं है. बाद में हमारे समझ में आया छोटी सी बात थी, उसको नींद आ रही है और भूख लग रही है.
1: चीज कुछ और चाहिए, हम चीजें कुछ और दे रहे हैं. वी हैव टू रिमेम्बर, अगर हम अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने दर्द से, यू नो फिजिकल पेन को भी आप देखो, अगर हमें थोड़ा भी दर्द है, आई हैव अ टूथएक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ नी पेन, लेट मी डिस्ट्रैक्ट माय माइंड टू समथिंग एल्स. एक मूवी देखने बैठ जाओ, दर्द नहीं होगा उतनी देर. किसी के साथ बातें करने बैठ जाओ, दर्द महसूस नहीं होगा. यहां तक कि कोई काम जो इंजॉय करते हैं, कि हम जब काम कर रहे होते हैं हमें दर्द नहीं होता कहीं शरीर में, जब काम खत्म हो जाता
0: है, दिन के बाद घर आया, भूख लग रही थी, खुशी खुशी डिशेस बना बना के भाग भाग के दे रहे हैं, फिर जब हो गए खा पी के, अरे मेरे को तो यहाँ दर्द है.
1: एब्सोल्युटली.
0: हमारी शूटिंग में होते हैं हमको फाइट वाइट में मार लग जाती है, घर जाके जब शावर के नीचे जलने लगता है इधर उधर, अरे यार यहाँ चोट कब लग गई थी पता ही नहीं चला, यहाँ दर्द हो रहा है.
1: नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, चोट थी उस टाइम भी, चोट थी,
0: महसूस नहीं हुआ,
1: मन उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ.
0: Okay,
1: right? The mind didn't go towards it, so it didn't feel it. But the pain was there. दर्द वहां पे था. इसी तरह अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मैं परेशान हूँ, मैंने कहा अल्कोहल ले लो, सिगरेट ले लो, टीवी देख लो, वी सेड दिस इज अ डी स्ट्रेसर. लेट अस अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ डी स्ट्रेसर. इफ इट वॉज अ डी स्ट्रेसर, मतलब वो वाली चीज मेरे स्ट्रेस को खत्म करती. मेरा दर्द वही का वही है, लेकिन मैंने क्या किया, दर्द से अपने मन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया. इज इट हेल्दी?
0: कभी कभी हटाते भी हैं और कभी कभी बढ़ भी जाते हैं,
1: लेकिन फर्स्ट इज इट हेल्दी अपने मन को दर्द से हटाना?
0: हेल्दी तरीके से हटाना हेल्दी है?
1: नहीं, इस तरह से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करके अपने मन को दर्द से हटाना, विल इट बी हेल्दी?
0: नो.
1: व्हाई?
0: क्योंकि वो झूठा झूठा आर्टिफिशियल है ना.
1: नॉट ओनली दैट, सपोज मुझे जैसे आपने कहा घुटने में चोट लगी है, सुबह से शूटिंग चल रही है, सुबह में चोट लगी थी, रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो दर्द की महसूसता नहीं हुई, लेकिन रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चोट उतनी देर में
0: बढ़
1: चुकी है. अगर हम अपनी जो चिंता है, परेशानियां हैं, जो वो थॉट्स हैं, अगर हम उन पे वर्क नहीं करेंगे, उनको ठीक करने की अटेंशन नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी चीजों में लगाते जाएंगे, वो जो बीमारी है, वो जो दर्द है, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा. बिकॉज इफ यू डोंट हील इट, इट्स इंक्रीजिंग, यू आर जस्ट टेकिंग योर माइंड अवे फ्रॉम इट. सो ये जो सारी चीजें हैं,
0: जैसे वो बच्चे को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करो, उसकी भूख और लग रही है, और लग रही है, उसके जो
1: क्योंकि उतना टाइम
0: नींद उसको और आ रही है, और चिड़चिड़ा हो रहा है.
1: आपने क्या किया, आपने आधा घंटे तक उसको वो देने की बजाय
0: कुछ और ट्राई किया,
1: और ट्राई करते गए, और जितनी देर बीच में टाइम गया उतना उसकी वो चीज जो चाहिए थी वो बढ़ता गया. सेम विद माई जर्नी ऑफ लाइफ, पेन है अंदर, दर्द है, मैंने कहा खिलौना ला दो, फिर उसके बाद बड़े हुए मोटरसाइकिल ले दो, ये खुशी देगा, ये खुशी देगा. अपने बेसिक थिंकिंग को उस पर वर्क नहीं किया तो वो जो थिंकिंग है, वो जो चोट है अंदर, वो जो दर्द है अंदर, वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही गया ना. और फिर एक ऐसी स्टेज पे आके पहुंचे, कहते हमारे घर में अब सब कुछ है,
0: सुख शांति नहीं है, हैप्पीनेस
1: नहीं है, दर्द अभी भी वही है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम अपनी खुशी को जहां जहां ढूंढ रहे हैं. सी, टू फाइंड हैप्पीनेस, लेट अस फर्स्ट रिमूव ऑल दोस थिंग्स जहां हमने सोचा कि खुशी है. वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड. इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर वेयर इट इज, फर्स्ट चेक ऑल दोस थिंग्स वेयर इट इज नॉट वेयर वी थॉट इट इज. ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स, साधन,
0: एडिक्शन,
1: यू नो, जैसे आपने कहा सुख शांति, ये जो हमारे साधन है जीवन के, इनको भी आज हमने टाइटल क्या दिया, सुख सुविधा के साधन. ये सुख के साधन है हमारे, हमने कहा ये सुख के साधन नहीं थे, ये कंफर्ट के साधन थे।
0: लेकिन सिस्टर पहले जमाने में सुख का साधन रेफ्रिजरेटर हुआ करता था 40 साल पहले, अब नेसेसिटी हो गया है।
1: 40 साल पहले भी वो सुख का साधन नहीं था,
0: कंफर्ट था।
1: कंफर्ट, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: नाउ एसेंशियल हो गया ना,
1: तो भी, लेकिन एसेंशियल ऑल्सो फॉर व्हाट? फॉर कंफर्ट। सुख और कंफर्ट, खुशी और कंफर्ट अलग चीज है। ये हर बार जीवन में हर चीज खरीदते समय जब हम दुकान में जा रहे हैं, आई हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट एम आई बाइंग एंड व्हाई एम आई बाइंग। लेट अस नॉट मेक ऑब्जेक्ट्स आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस
0: एंड इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय राइट नाउ
1: एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या लेट अस नॉट मेक देम आर स्टेटस सिंबल। We have made objects. मेरे पास फोन कौन सा है? फोन का काम है बात करने के लिए, लेकिन ये फोन होगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये ऐसे वाला फोन है इनके पास। तो मैंने ऑब्जेक्ट्स को,
0: आप फोन की बात कर रहे हैं, अभी मैं आ रहा था जब हैदराबाद इस शूटिंग के लिए, तो मेरा स्टाफ बोल रहा था साहब ये तो विवेक जी का स्टाफ लेकर जाता है बैग, आपको शोभा नहीं देता, आप जरा महंगा वाला बैग ले लो। मेरा स्टाफ मुझे सिखा रहा था क्योंकि एयरक्राफ्ट पे एयरपोर्ट लोग देखेंगे, ये उतरेंगे तो कौन सा साहब ने कौन सा वो लाया, कौन सी घड़ी पहनी है।
1: एब्सोल्युटली। तो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या क्या बना दिया, साधनों को, चीजों को हमने क्या क्या बना दिया, और तब क्योंकि उसको हमने स्टेटस सिंबल बना दिया, हमने उसको रिस्पेक्ट का तरीका बना दिया।
0: हाँ, जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा था, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, स्टेटस सिंबल। लेकिन मैं आज भी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं फिर वहीं आऊंगा कि आज की दुनिया में जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, शो ऑफ, शोमैनशिप की जरूरत। जब सब लोग ये करते हैं तो मतलब सारी दुनिया ही रॉन्ग होगी आपके लिए।
1: अगेन, वी आर नॉट सेइंग रॉन्ग और राइट, इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, इट्स अबाउट क्लैरिटी। इट डजंट मीन कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो, इट डजंट मीन कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगे से महंगा मकान नहीं खरीदो।
0: आपको मालूम है हमारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं, यार क्या इस आदमी का स्टाइल है, क्या रॉयल आदमी है, स्कॉच से कम तो पीता नहीं है, बीएमडब्ल्यू से कम तो उतरता नहीं है, पर्स भी लेता तो महंगे में महंगा, शर्ट भी लेता, क्या आदमी रॉयल है, क्या स्टाइल है उसका,
1: स्टाइल
0: तो है उसकी, क्या उसकी इज्जत करते, आते तो खड़े होते हैं लोग,
1: खड़े होते हैं,
0: कोई मैं पैजामा पहन के धोती पहन के चला जाऊं,
1: खड़े होते हैं। अगेन वी सॉ लास्ट टाइम, खड़े होते हैं
0: तो
1: स्टाइल है, अग्रीड, ये रिस्पेक्ट नहीं है।
0: जो भी अच्छा तो लगता है ना,
1: अच्छा लगता है कि आपके लिए लोग खड़े हो रहे हैं, दैट्स फाइन। सी, वी आर नॉट, सी अगेन, वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, वी आर सेइंग
0: सोसाइटी में तो यू आर रिस्पेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड,
1: एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, डिफरेंट वर्ड्स। एक्सेप्टेड मीन्स हाँ, इन्होंने बहुत अचीव किया, उस बात को एक्सेप्ट किया है। आपके व्यवहार, स्वभाव और संस्कार को एक्सेप्ट किया है। आपकी गाड़ी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको एक्सेप्ट किया। अगर आपने जब
0: आज मैं अपनी बेटी शादी में दूं तो अच्छे स्वभाव और संस्कार खाली देख के नहीं दूंगा,
1: ये देखूंगा
0: इसके कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं। मैं खुद नहीं करूंगा तो आपको फिर मैं क्या बोलूं?
1: अब जब आप ये सब देखकर रिश्ता जोड़ेंगे,
0: बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर, बहुत बड़े पंडित जो सबकी शादियां कराए, सबको डोनेशन करके, घर में कुछ एक छोटी सी हंडी है उधर मैं बेटी दे दूंगा, इतने बड़े संस्कार वाला आदमी है।
1: परफेक्ट। तो आपने डिग्री देखी, लुक्स देखी,
0: गाड़ियां देखी, मेरी बेटी कितना आराम करेगी वो देखा,
1: सब कुछ देखा,
0: नौकर है या सारे दिन किचन में बैठे रहेंगे, सब देखूंगा ना,
1: सब देखकर शादी की ना,
0: देखकर ही करेंगे ना।
1: फाइनली जो रिश्ता जुड़ेगा दो लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच जो रिश्ता जुड़ेगा, और कितना सुंदर वो रिश्ता होगा, कितना उनका आपस में संस्कारों में तालमेल होगा, कितना सुखी वो परिवार होगा, कितना प्यार उन दो लोगों के बीच में होगा, गारंटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्स एंड द बंगलोज यू सॉ इन द बिगिनिंग?
0: नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये रिश्ता दुकान में नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं परचेज किया जाता, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
1: अगर हम अगर हम थोड़ा सा स्वभाव संस्कार देख लेते उस टाइम, हम किस से शादी करते हैं।
0: ध्यान में क्यों नहीं आती ये बातें?
1: क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइफ, अगर मेरी बेटी जिस घर जाएगी वहां अगर गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा, उस घर में अगर सारी चीजें होंगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी।
0: नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इतने ऐसे परिवार मालूम है जहां पर डिवोर्स ही हुआ है।
1: इट्स नॉट ऑल्सो कि अगर ये सब
0: नहीं, रिचनेस देख के किया, पैसा देख के किया।
1: इट्स नॉट, सी अगेन, इट्स नॉट कि रिचनेस इज नॉट राइट। रिचनेस इज ब्यूटिफुल। इट्स ब्यूटिफुल टू हैव मनी, वेरी नाइस, बट डोंट से मनी फॉर हैप्पीनेस। पैसा होना आपके पास है, इट्स ब्यूटिफुल। आप दुनिया की सबसे महंगी चीज खरीद सकते हैं, ब्यूटिफुल, लेकिन खरीदते समय ये अपने आप से नहीं कहना कि दिस ऑब्जेक्ट इज गिविंग मी हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट।
0: एक छोटे मोटे शायर ने एक लाइन बोली थी, उसने बोल दिया, अरे पैसा तो खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम तो खुदा से कम भी नहीं। तो उसने इक्वेट कर दिया पैसे को खुदा से,
1: क्योंकि
0: हिंदी में भी बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी पूजा, तो ऐसे ही सब बन गए, मतलब इतनी।
1: लेकिन अब चेकिंग करनी है ना, अब अपने जीवन की चेकिंग करनी है। अगेन, सब लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इट टू दैट। लेट मी सी माय क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय,
0: बट
1: व्हाई एम आई नॉट हैप्पी टुडे? Each of us can sit back and ask themselves, I have everything that money can buy.
0: जवाब तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिस्टर मेरी गुरु के पास मैंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को झुक कर, माथा टेक कर, भीख मांगते हुए देखा है अपनी आंखों से कि मुझे गुरु जी मुझे सुख शांति दो, मैं खुश नहीं हूँ। अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं, सब कुछ रखते हुए खुश क्यों नहीं है। फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब दरिद्रता में है, जीरो मनी में है, उधार में है, परेशान है, उसके बाद भी तो नहीं है ना सुख शांति।
1: इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, विच मीन्स ये दोनों चीजें अलग अलग हैं।
0: दोनों एक्सट्रीम्स हैं?
1: नहीं, एक्सट्रीम्स नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं।
0: तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है?
1: ये दो अलग चीजें हैं। फर्स्ट लेट्स लुक एट इट, ये दो अलग चीजें हैं। एक चीजें हैं जड़, सारी जड़ चीजें हैं जो पैसा खरीद सकता है, सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इस जीवन में की, वो एक साइड है, लेट्स टेक इट एज वन साइड। दूसरी साइड है माय होल लिस्ट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, माय वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें आपने जैसे कहा सुख शांति, लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये एक लिस्ट है। वी आर नॉट सेइंग कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं होगी, या जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुशी होगी। इट इज जस्ट दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स।
0: अच्छा,
1: ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये ना सोचें कि ये वाली लिस्ट आ जाएगी तो ये वाली भी लिस्ट आ जाएगी। हमने सिर्फ वो छोटी सी की गड़बड़। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
0: हमारी। कौन सी लिस्ट, प्लीज बताइए?
1: एजुकेशन, अचीवमेंट्स, all the products that I have bought, this is one list. Happiness, love, respect, peace of mind, this is one list. We just have to remember these are two different lists. ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने क्या कहा, ये आएगा, चीजें आएंगी, अचीवमेंट आएगी, प्रोफेशनली आई विल डू वेल, अचीव करियर में मैंने बहुत ज्यादा किया, तो ये लिस्ट अपने आप आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, लोग मुझसे प्यार करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने कहा ये लिस्ट आएगी तो ये वाली लिस्ट अपने आप आ जाएगी। तो हमने अपने जीवन में मेहनत सारी कौन सी लिस्ट पे की? इस वाली लिस्ट पे। यू नो इट्स लाइक हैविंग टू गार्डन्स, एक हमारे घर के आगे, एक हमारे घर के पीछे। तो ये दो गार्डन है हमारे जीवन के, दो गार्डन है। एक है भौतिक, जिसको आज लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मटीरियलिस्टिक मीन्स मैटर, एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड मी, मटीरियलिस्टिक। वन इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ। वॉट इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ? एवरीथिंग दैट इज इनसाइड मी। मटीरियलिस्टिक, एवरीथिंग आउटसाइड अचीव्ड। स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इनसाइड, राइट? तो कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ जब से हो गई ना तब से खुशी गुम हो गई। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू एट ऑल। किसी के लिए कहेंगे ये बहुत मटेरियलिस्टिक है. मीन्स इट्स नॉट राइट. नो इट्स नॉट ट्रू. इट्स गुड टू बी मटेरियलिस्टिक. यू शुड हैव एवरीथिंग. आप जितना खरीद सकते हैं यू शुड हैव एवरीथिंग विद द क्लैरिटी. ये एक गार्डन है मटेरियलिस्टिक. ये दूसरा गार्डन है सुख शांति खुशी. हमने क्या कहा, इस गार्डन को पानी देंगे
0: तो ये अपने आप ग्रो हो जाएगा.
1: अपने आप ग्रो हो जाएगा. तो हमने अपने दिन के 24 घंटे किस गार्डन में बिताने शुरू कर दिए. ये करना है.
0: और उसको हमने इसका रिजल्ट मान लिया. ये करने से वो
1: ये हो जाएगा. हाँ, हमने सोचा इधर मैं पूरा दिन बिताऊंगा ना इस गार्डन को सुंदर बनाने में, तो मेरा ये गार्डन तो अपने आप हो जाएगा. लोग मुझसे प्यार करेंगे, खुशी आ जाएगी, विश्वास होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी सबसे. हमने ये गार्डन पर ध्यान नहीं दिया.
0: क्या करें बात.
1: अब रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ये गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया है. आज आप देखो हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा आगे वाला गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया. जिस गार्डन पर ध्यान दिया, दिस इज अ लॉ, स्पिरिचुअल लॉ. वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज. वेर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो. आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे आपकी पूरी ऊर्जा वहां जा रही है. जहां आपकी ऊर्जा जाएगी वहां अपने आप चमत्कार होने लगेंगे. आज हमने चमत्कार कर दिए हैं दुनिया के अंदर. हम स्पेस में जा सकते हैं, हम सागर की तलों में जा सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं. अटेंशन वेंट देयर, एनर्जी वेंट देयर, वी क्रिएटेड मिरेकल्स. अपने अंदर खुशी क्रिएट करनी है, शांति क्रिएट करनी है, वो नहीं सोचा, क्योंकि हमने सोचा ये करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा. तो उस गार्डन पे अटेंशन नहीं दिया. अटेंशन डेंट को एनर्जी डेंट फ्लो, और वो वाला गार्डन क्या हो गया.
0: क्या करेंगे, जो आप बोल रहे हैं अब इस वक्त सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो द नंबर वन प्रोड्यूसर्स, नंबर वन एक्टर्स, नंबर वन डायरेक्टर्स, नंबर वन म्यूजिक के लोग अकेले घर में बैठे रहते हैं. जब उनकी पिक्चरें नहीं चलती फेल हो जाते हैं, और जब पैसा नहीं कोई जहां चलता वहां जाते, तो उसको लोग दैट इज देयर हैप्पीनेस. तो लाइफ
1: नहीं, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट इज द फ्रंट गार्डन.
0: और जब घर पे लोग आना बंद करते हैं, फोटोग्राफर्स फोटो खींचना आपके छोड़ देते हैं, आपके पास कोई आके आर्टिकल्स आपके नहीं लिखता है, तो इधर के गार्डन में है कि कौन से गार्डन में है, वो कहां जाए.
1: पीछे वाला गार्डन
0: इसलिए देखिए ऑन एंड ऑन उसी को पानी डालते रहते हैं,
1: उसी को पानी डालते रहते हैं ना. और पीछे वाला गार्डन सूख रहा है ना.
0: पीछे वाले गार्डन को कोई देखता है क्या?
1: देखता नहीं ना.
0: मैं खुद नहीं जाता वहाँ.
1: हाँ, तो अब पीछे वाले गार्डन को नहीं ध्यान दिया, तो फिर इवन व्हेन आई हैव एवरीथिंग व्हाट डिड आई से, यू सेड आई एम नॉट हैप्पी. एंड देन बाय चांस, जैसे आपने कहा, अचीवमेंट में भी अगर कुछ कम हो गया, तो जब आगे वाला गार्डन सूखा हुआ थोड़ा सा मिला, नाउ लेट्स लुक एट द अदर वे.
0: ये पॉइंट अच्छा है. आगे सपोजिंग जब खाना पीना है सब खत्म हो गया, तो पीछे जो हमने स्टॉक में रखा है नहीं कुछ के संभाल के, वहाँ अपन उस गार्डन में बैठ के आराम करें,
1: नहीं कर सकते.
0: अगर उस गार्डन में मैं राजा हूँ, तो यहाँ के राजा में इतना राज हार भी जाऊँ, तो ये राज उसके हवाले करके वहाँ वापस राजा बन सकते.
1: ब्यूटिफुल ना. अब इसमें देखो, आगे वाले गार्डन में मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, पीछे वाले गार्डन में खुशी कॉन्फिडेंस, खुशी कॉन्फिडेंस पावर ट्रस्ट रिस्पेक्ट. ये मेरा पीछे वाला गार्डन है. मेरा आगे मटेरियल गार्डन मुझे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है, बट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मेरे मटेरियल गार्डन को स्ट्रॉन्गर बना सकता है.
0: और मटेरियल गार्डन नष्ट भी हो जाए तो वह सुख शांति मुझे दे सकता है.
1: I am still happy. वाला,
0: हाँ, सुख शांति स्पिरिचुअल गार्डन दे सकता है. ये गार्डन सुख शांति
1: खुशी
0: नहीं दे सकता,
1: क्योंकि ये बाहर है.
0: थोड़ी समझ,
1: ये चीजें बाहर है. स्पिरिचुअल अगेन डजेंट मीन सम अदर थिंकिंग. यू नो सम पीपल से ओ व्हाई डिड यू गो इन द स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स नॉट अ डिफरेंट लाइफ. इट्स
0: स्पिरिचुअल मतलब ये तो नहीं ना माला लेके सारा दिन जपते रहना.
1: एक है जो चीजें बाहर हैं और एक है वो चीजें जो अंदर हैं. खुशी एक फीलिंग है, लव फीलिंग है, रिस्पेक्ट फीलिंग है, कंटेंटमेंट फीलिंग है, विल पावर फीलिंग है, ट्रस्ट फीलिंग है. स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, आत्मा की ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये अंदर है. नॉलेज अचीवमेंट डिग्रीज पोजेशन प्रॉपर्टी रिलेटिव्स बाहर है.
0: ये फीलिंग्स है और वो फिलिंग है.
1: हाँ, स्वीट. हाँ, yes.
0: इससे खोखलापन आता है, इससे भरता जाता है.
1: उससे खोखलापन भी नहीं आता. सी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है.
0: खोखलापन नहीं बोल रहा, उससे वॉइड जो आप बोल रहे थे, सब कुछ रखते हुए भी अशांति नहीं आ रही है.
1: right.
0: मेरे गुरु के पास लोग जाते हैं, पांव पड़ते हैं, मैं बस सब कुछ है, मेरे को सुख शांति नहीं है, उसको मैं शब्द को खोखलापन
1: like
0: वो वॉइड, वो खालीपन, वो जब बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ फीलिंग बता रहा हूँ, वहाँ फीलिंग है.
1: Like you said, कि सब कुछ है, मतलब मेरा सामने वाला गार्डन इज फ्लरिशिंग. फ्लरिशिंग मतलब अब कोई रह नहीं गई चीज जो मैं उस गार्डन में ग्रो करूं, सब कुछ आ गया. अब मैं पुराने वाले, पीछे वाले गार्डन पर गया, क्योंकि उसको मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था. वहां क्या आ गया, जिस चीज पर अगर गार्डन पर अटेंशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा,
0: वो क्या बोलते हैं, कांटे वाले झाड़,
1: जमीन बंजर भी हो सकती है, बहुत कुछ हो गया. तो जीवन कैसे हो गई, नीरसता, दुख, गुस्सा,
0: चुभने वाले कांटे वाले मैं पेड़ बन जाता हूँ, लोगों को चुभता.
1: अब ये भी नहीं करना है कि ये गार्डन से ध्यान हटा के इस गार्डन में लग गए तो वो वाला गार्डन सूख जाए. जीवन की इक्वेशन बहुत राइट होनी चाहिए. ये गार्डन भी इम्पोर्टेंट है, ये गार्डन भी बहुत इम्पोर्टेंट है. 24 घंटे अगर इस गार्डन में बिताते हैं, वॉट ऑल आई हैव टू डू द होल डे, आई हैव टू डू ऑल दिस, 24 घंटे अगर ये गार्डन में बिताते हैं, सिर्फ सारा कुछ बाहर करते हुए, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ हाउ आई एम बींग वाइल डू इट. फर्स्ट वी सेड वेन आई डू इट आई विल बी, नाउ वी गोइंग टू चेंज इट लिटिल बिट एंड चेंज द वे वी आर गोइंग टू लिव, हाउ आई विल बी वाइल डूइंग इट. एक था ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी, नाउ वील गो ऑन अ जर्नी एंड से व्हाइल आई एम हैप्पी नाउ आई एम डूइंग दिस. मतलब इस गार्डन का ध्यान रखते हुए अब मैं इस गार्डन का ध्यान रखूंगा. तो मेरा जो ये गार्डन है, माय इंटरनल गार्डन, इफ दिस इज ऑलवेज स्ट्रांग, तो अगर मेरा जो आउटर गार्डन है ऑफ अचीवमेंट्स, उसमें अगर कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ भी जाए, मेरी खुशी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए. जैसे आपने कहा, पीछे वाला गार्डन हमेशा स्ट्रांग है. अब इसमें सैटिस्फैक्शन इस बात की है कि जो ये बाहर वाला गार्डन है ना, ये परिस्थितियों और लोगों पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो ये पीछे वाला गार्डन है, ये सिर्फ एक के कंट्रोल में है. परिस्थितियां और लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है.
0: एक के कंट्रोल में मतलब,
1: मेरे अंदर का जो गार्डन है वो किसके कंट्रोल में है?
0: एक मीन्स
1: में आई
0: सिस्टर, एक मीन्स मैं. बहुत अच्छा ये पॉइंट है, मुझे इस पे आपसे बात करना है. मैं अगले एपिसोड में जरूर करूंगा, और इस बार समय बीतता जा रहा है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार एंड ओम शांति.
1: ओम शांति.
2: टीवी, शॉपिंग, हॉलिडे, स्मोकिंग और एल्कोहल इज नॉट अ डिस्ट्रेसर, इट इज ओनली अ टेम्पररी डिविएशन फ्रॉम द पेन. The emotional wound of stress, anger or hurt gets deeper because instead of healing it, we are distracting our mind away from it. Achievements and possessions can get us regard, not happiness and respect. Regard is an outer gesture and respect is a feeling for what the person is. Possessions give us comfort. Physical comfort is different from emotional comfort. Happiness, peace and love is our internal creation and can be created irrespective of external comforts.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at

0: यार तू इतने नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: मारो ते सस खत्म नहीं तुझे आने रो
1: अंकल जी ते आंटी जी।
2: सस्रीकाल एशलीन।
1: की हाल है?
0: एशली नहीं है,
2: नहीं है,
0: एशली नहीं है,
2: ये सरदार जी है।
1: हाँ जी,
2: हाँ जी।
0: सरदार जी ये ना आंटी को पहचाने नहीं जाते, तुही ट्रिक कर देंगे, तुही ट्रिक कर देंगे जे।
2: मैं कई बार इतना ढिला ढिला एशली नहीं बोलती।
0: नहीं है, वही उस तो भी ढिले हैं।
1: अस्सी कालू स्नो गेसी।
0: अच्छा,
1: बैरो रात गेसी।
0: ओके, तो फंसी
1: अस्सी चिगे। उठे अस्सी खेदी उठे ते उठे बबल सी ते स्नो सी।
0: ओ
1: फेक,
0: तो फिर फन होया था डा।
1: हाँ जी।
0: ओके, खूब एंजॉय कीता।
1: मैं
0: अच्छा मैं ओके
1: ठंड बड़ी सी।
0: सेंटा मिला ही?
1: हाँ जी।
0: गुड, ओथे तो बहुत फन हुंदा ना।
1: हाँ जी।
0: किन्ने के लोग ही?
1: थोड़ी
0: हैं, थोड़े ही। ओ गली गली जी ते भरी हुंदी सारी, ओ ते सारी गली भरी भरी हुंदी है।
2: कल नहीं हो रही
1: ज्यादा सी थोड़ी जी।
0: अच्छा, मी पेंदा है
2: ज्यादा सी,
0: मी पेंदा है कल।
1: हां जी, थोड़ा जा मी पेंदा सी।
0: ओ ता करके फिर है। फिर गोरे मिले ही?
1: हां,
0: गोरे मिले ही।
1: हां जी।
0: ओके, की कहंदे ही?
2: सरदार जी बल्ले बल्ले
1: साडे दा फोटो खिचो।
0: अच्छा, ओ कहंदे फोटो खिचो साडे ना। ओहो,
1: हां जी।
0: ते तुही कोट पा के गए ही हंदे?
1: मैं पैंट पा के गए, जैकेट पा के गए ते ग्लव्स पा के गए।
0: ओके, कैंट वाली टोर काट के गए है ना।
1: हां जी।
0: मुछ खड़ी कीती कि नहीं?
1: किती।
0: दाढ़ी तेल लाया है?
1: नहीं।
0: दाढ़ी सेट नहीं की थी?
1: नहीं।
0: ओ जाओ सरदार जी, दाढ़ी दूड़ी सेट करके जाना ही।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी।
2: नेक्स्ट टाइम
0: की सुनाओगे फिर?
1: एक बुजालत।
2: ओके, हाँ जी, हाँ जी।
1: एक निका जा काका कार दा रखा।
0: ये तो वीरा ही आ, जदों सारे जने जान वीरा वा इन, जदों सारे जने जांदे सरदार जी नू घर छड़ जांदे।
2: ये तो इजी सी।
1: हां जी,
0: हां जी,
2: हां जी।
0: ये ठीक होगी फिर?
1: हां जी,
0: बस ठीक है फिर।
1: जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद।
2: शाबाश, शाबाश।
0: जो तू ही कहता ठीक है।
2: दीदिया किथे सरदार जी दी?
1: गद्दी च।
0: ओके, केड़ी दीदी ना गल कराओगे?
1: वड्डी दी, एक्चुअली छोटी दीदी।
0: केड़ी लड़दी है ज्यादा? आज केड़ी लड़ी है?
1: शिका।
0: हाँ, सस्रीकाल।
1: अंकल जी से अंटी जी।
0: सस्रीकाल, की हाल है?
1: ठीक है, तादा की हाल है?
0: सब ठीक है,
2: बढ़िया है। हाँ जी,
0: ठंड तो नहीं लगती?
1: नहीं।
0: ओहो,
2: बैगे गड्डी च?
1: हाँ जी, असि स्कूले पहुंच गए।
0: स्कूले पहुंच गए? ओके ओके, ठंड तो नहीं है?
1: नहीं।
0: ओ तानू पता अज ना सवेरे एक कुड़ी नू इन्नी ठंड लगी, ओदी गोते खड़ी होगी तानू। ठंड दे नाल
2: आकड़ी,
0: ठंड बड़ी ही ना।
1: ठंड इन्नी ज्यादी भी नहीं हैगी,
0: पर ओनू ज्यादी लगी ना ओदी गोत नू। ओ ताडे तों अद्धा घंटा पहला गई है स्कूल।
1: दादा ने जुल्ला पाया।
0: जुल्ला पाया?
1: अच्छा, मम्मा ने कोट पाया।
0: ओके, तू ही की पाया?
1: जैकेट, ਤੇਰੀ ਸਕੂਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ।
0: ਅੱਛਾ ਸਕੂਲੇ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ,

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.